आप कहते हैं तानु गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तो शहनशाहों का शहनशाह है, तेरे समान संसार विच हो

सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिस दी मदद कोई नहीं करता उस दी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है। सात सगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उना नू वंडन वाला है। सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं ए धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजिया का महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार नू छड़ के तेरे चरणों विच आया हां

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जांदा। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलां दा हाल जानता है, क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला। सात सिद्ध बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जब आनंदपुर का किला उजड़ गया, पीछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनी है तां सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अधे कीर्तन विच बह जाओ, ते अधे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हन, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए। सुध साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, ओ गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जांदे। दया सिंह तू भी शहीद हो जांदा, मैं भी शहीद हो जांदा, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हन, उसकी जड़ी भगती कीती है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं। आप दे उस वेले 9 साल दी उम्र सी। हिंदू धर्म दी रखिया दी खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर दा किला उजड़ गया, चार साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी,
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ए अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मना दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दियां चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनु रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री। अनेका ही नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगां लंघ गए, दुश्मन घेरे नू तोड़ छड़िया। तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकदा, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे होया भाई साहब भाई नंद लाल जी

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

मेरे मालिक रहमत कर दे मैनू उन्हां दे चरणां दी धूड़ प्राप्त होवे जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन से मिलाए जी तू जिथे मिलिया मेनू भी मिला जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दे मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखा जेड़े तुरे हुए ने पहुंचे हुए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय किए हुए मंजिला मारदे तुरे जा रहे ने जे ओ जेड़े मंजिला मारदे जा रहे ने साहब कहंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल तो की करदे ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारन च फर्क है जिसने सूरज चढ़दा है उसनू डान कह देते हैं लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला सूरज चढ़न तो बाद जेड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर देता सवेरा जिन्होंने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़ दे जेड़े इस मार्ग से तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही भाई साहब कहंदे ने ऐसे लोग जेड़े गुरु मार्ग के अमृत वेले तुरदे ने मेरा तो जी करता है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख सिख सिर दी चोटी नख सिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण के चरण पैवाई कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तों निछावर कर दे वारने कर दे कहंदे ने अग्न जलाए हुण पीसन पिसाए तेह चक्की च पी दियो अग च भुन दियो लै उडे पौन होए अनेक प्रकारिये तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दियो हवा विच मेरे शरीर दी खाक उड़ जावे ते फिर कहंदे ने जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात सवेरे सवेरे जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणा वाल तुर के आउंदे ने जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिखां दे चरण गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणा वाल गुरु द्वारे वाल वधदे ने ताहू ताहू मार्ग मैं पसम को डारीए मेरे शरीर दी ओ पसम जेड़ी उन्हां उन्हां रस्तियां ते फैला दे उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दियो मेरे शरीर नूं सुआह करके पसम करके तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे उन्हां रस्तियां ते पैदल चलण वालियां दे चरणा नाल मेरा प्यार बनिया रहे मेरी लिव लगी रहे दया के दयाल मोहे पतत उधारिये ताकि उन्हां दे चरणा दी खाक प्राप्त करके मेरे शरीर दी खाक उन्हां दे चरणा दी छोह प्राप्त करके मैं पापी पार उतर जा मेरा पापी दा भी उधार हो जा कैसी प्यारी जीवन जाच है उत्तम करे पलके प्रभाती अमृत वेले उठे उद्दम करे आलसी ना रह जावे क्योंकि आलसी दा निरा रोगी किसे पासे भी कामयाब नहीं हो सकता गुरसिख जीवन दे हर मैदान विच सफलता नूं प्राप्त करने वास्ते उद्दम करदा और महाराज दे पावन बाणी च सुचेत कराया उद्दम करेंदिया जीओ तू कमांदिया सुख पुंज ध्यानदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत उद्दम करके जी उद्दम करके कमाई भी कर ते ध्यान करके भगती करके प्रभु दे नाल सांझ भी भर पा लै इधर भी मिलाप कर लै इस तरह तेरा जीवन एक चैन वाला सुख वाला निश्चिंती वाला हो जाए इशनान करे अमृत सर नावे शरीर करके भी शुद्ध ते जिथे बाणी दा अमृत वसदा हो उस सत्संगत दे अमृत सरोवर में आके मन नूं भी डुबिया लवा उपदेश गुरु हर हर जप जापे गुरु का उपदेश श्रवण करे उसके अनुसार ही उतर गए।

हर मुर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए बाब जिन्ना ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारिया नू चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

हाँ ते बलहारी जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख ने एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज कार विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जाऊं मैं उन्हां तों बलिहार जाना।

और जिन्हां ने इस प्यार नूं जान लिया उन्हां दा जीवन दुनिया दे राग रंगा तों उत्ते हो जांदा है। क्योंकि साहिब जी बयान करदे हन जिन्हां ने नाम दा रस पीता उन्हां नूं दुनिया दे झूठे रसां दा फिर मुहताज नहीं होना पैंदा। आओ विचार करिए जो इस शब्द की भावना है, जो इस शब्द विच प्यार है, उस प्यार वल आपा अपना मन जोड़ी रखना है और विचार करिए कि जिन्ना ने प्यार किया उन्हां दे मन दी तड़प किस तरह दूर होती है और किस तरह उन्हां नूं

मेरे नानक की वड्डी भैन नानकी आ रही है। नानकी नहीं पहला पहचाने आसी, नानकी नहीं सानू के आसी कि ए अर्शा तू आया है। इस न पुत्र ना समझो, ए आप आया है। तृप्ता ओ देख नानकी आ रही है, ते मैनू जापद है जे नानक दी प्यारी भैन आ रही है ते नानक भी जरूर आवेगा। मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी ओ भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विचों अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तूं आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया है तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तेनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नू मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी दे कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते घुमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ए नहीं हो सकदा। सतसंग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके है, चंगा पिता ना बन सके है, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके है, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके है, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखने है। वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखे साडे मन विच प्यार होवेगा अपने करदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

गुरु नानक साहब ने बेबे नानकी नू जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्लां नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लैके आओ। शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाण का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले हो। साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नू ही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाए। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर के ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

तेरी ये जवानी को मिला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना है।

जे पूछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंग है, टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर, सदा संग नाही प्रभ दूर। कवला चरण शरण है जाके, कह जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता, सो समरथ निज पद है दाता। कहत कबीर पूरन जग सोई,

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा।

सिकंदर को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

गुरनैन बैन कुल गुरतर गुरु सत कव नल कह गुरु सत कव नल कह जिन गुरु न देखो न कियो

सुनिए सिख सही साहब जी कहंदे हन आ दुनिया दे लोको मेरी एक सच्ची सिख्या ले लो। आख्या महाराज केड़ी सिख्या ओ साहब जी कहंदे हन जेड़े कर्म तुसी कर रहे हो जे चंगे कर्म कर रहे हो वह भी तुहाडे लिखे।

एडे कीमती श्वास पाए जिना नाल तैं जपना सी श्री वाहिगुरु। उस मालक नूं ही विसार बैठा, इत्थे दी तां सोझी रही, इत्थे तां चंगा घर बना ले, लेकिन अगां जिस घर विच जाके रहना सी उहदा चेता ही कोई नहीं। साथ संगत बोलो श्री जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता न, ओ अगे दी चिंता तेनू विसर गई। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नू तारदे होए एक नगर दे बाहर आके बैठे, की वेख्या एक बिरध बाबा जो अपने बच्चियां नू बड़ी ताड़ना कर रहे, ए कम करो ओ कम करो, जे कम नहीं करोगे तो भुखे मर जाओगे। ते इस बिरध बाबे ते धन गुरु नानक पातशाह दी नजर पै गई, ते आख्या जा मर्दानिया ओ बाबे नू बिरध नू इत्थे साडे कोल लै के आ। मर्दाना गया आख्या बाबा तेनू परमेश्वर दे रूप धन गुरु नानक पातशाह जो इस वक्त जगत नू तार रहे हैं आज इस नगर दे बाहर आए हैं और उना दी नजर तेरे उते पै गई है, उना ने तेनू अपने पास बुलाया। ते जदों ओ बिरध गया ते पातशाह धन गुरु नानक देव कहन लगे आ बिरध बाबा हुण तां घर दे जंजाल छड दे, क्योंकि बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीत गई है, हुण तां थोड़ी रह गई है, पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते आ इस बूटे नूं रोड़ के लै जा। साथ संगत बोलो श्री हुण परमेश्वर दा नाम जप लै, वेला है, जे नाम जप लवे तां असी तेनू मुक्त कर देंगे। ओ बिरध बाबा कहन लगा पातशाह आ अपनी मुक्ति तुसी अपने कोल रखो, मैं मुक्त होना ही नहीं चाहुंदा, क्योंकि जे मैं ना होवा तां कर दे आ कम कार कौन करेगा, धंधे कौन चलाएगा, आ मेरे पुत्रां नूं तां कोई सोझी नहीं। साहब जी कहन लगे अच्छा भाई तेरी मर्जी, असी तां हुण बचन कर दिता तेनूं मुक्त करन दा, लेकिन हुण जदों तू कवेंगा ना मुक्त कर तां करांगे। साथ संगत बोलो श्री साहब जी चले गए। कुछ समा पा के मुड़ उस नगर विच्चों लंघे, उस बिरध बाबे दे परिवार ने गुरु नानक पातशाह नूं पछाण लिया। बिरध बाबे दे लड़के धन गुरु नानक पातशाह नूं अपने घर लियाए, आख्या महाराज तुसी ओही हो जो साडे आ बुजुर्ग पिता नूं उपदेश दिता सी कि नाम जप लै मैं तेनू मुक्त कर दिया। पातशाह कहन लगे हां किथे है ओ, अंतर जामी सब कुछ जान दे। आख्या किथे है ओ, तां परिवार दिया ने आख्या जी ओ तां कुछ साल हो गए हैं, ओ तां गुजर गए हैं। साहब जी कहन लगे अच्छा अंतर ध्यान हो के जा तकिया तां गुरु नानक पातशाह ने के ओ बिरध बाबा इन्हां दे ही घर बलद दी जून पा के, बैल दी जून पा के खड़ोता है। साथ संगत बोलो श्री साहब जी ने मर्दाने नूं आख्या जा ओ सामने बैल खड़ोते ना, ओदे कान विच पिछले जन्म दी सोझी पा आख तेनू गुरु नानक पातशाह आए हन मुक्त करन वास्ते, जे तू आखे तां कर देईए। उने सिर हिलाया जिवें कहिंदा होवे कि मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि 500 दा तां जे मैं मर गया 500 दा तां ए नुकसान होवेगा परिवार नूं, ते 500 दा नवा बैल लियाना पवेगा, मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा। पातशाह से कहन लगे चल मर्दानिया अजे इसने होर मोह दियां चपेड़ां खानियां। कुछ समा बाद गुरु नानक पातशाह
मुड़ उत्थों दी लंगे तां की वेख्या, आ बिरद बाबे दी आत्मा कुत्ते दी जूनी विच कार दे बार खड़ोती हुई है, कुत्ता बनिया पै। साहब जी कहन लगे आ मर्दानी

0: ते मैं इस वास्ते बाहर खड़ोता हां पैरे ते के कोई घर दा तन ना लुट के लै जावे। सात संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु।
0: साहब जी हसे आख्या चल मर्दानिया अजे होर जूनिया पाल। कुछ समय बाद जदों एक मरन लगा ख्याल उस थां ते गया जिथे घर विच तन दबिया सी ते सप दी जूनी पा के उस तन ते जा बैठा। एक दिन घर कोई नहीं सी, आ जितने आदमी सन खेतां विच गए सन, माइयां बीबियां कपाह चुनन गईयां सन, एक गोदी दे बच्चे नूं पंगूड़े विच पा गए ते जदों ओ पिछों बच्चा रोया ए मोह दा मारिया होया कि मैं जाके बच्चे दा मन परचावां, खुड विचों निकलिया रस्सी दे राहीं उतरदा होया पलंग ते पंगूड़े विच आ रहा, ए नहीं समझिया कि मैं सप दी जून विच हां। ताईं किसे ने वेख लिया लठा नाल मार मार के थां ते खत्म कर दिता। गुरु नानक पातशाह चौजी प्रीतम संसार नूं तारदे होए कुछ वरिया बाद मुड़ उस नगर विचों दी लंघे तां की वेख्या ए बिरद बाबे दी आत्मा एक कीड़े दा रूप धार के गंदी नाली विच पई होई है। सात संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु।
0: साहब जी ने आख्या मर्दानिया आ जेड़ा कीड़ा नाली विच पे है ना इस नूं बाहर कट। ओ बादशाह इस कीड़े नाल तेरा की कम है? मर्दानिया कम है। मर्दाने ने टके दे नाल कीड़े नूं बाहर कढ़िया। साहब जी ने उत्ते जल पुआया अपनी तली ते रख के पिछले जन्म दी ज्ञात दे के आख्या क्यों बिरद बाबा तेनू हुण भी मुक्त कर दिए जा हुण भी जोनियां भोगणियां। सात संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु।
0: उस वेले शरीर कड़कड़ा के साहब जी ने ज्ञात जो सोजी जो दे दिती सी ते फिर आवाज आई पातशाह मेनू हुण मुक्त कर दे, मैं इस मोह दे किचड़ विच पै के बलद दी कुत्ते दी सप दी कीड़ा आदक जूनियां पाईया। आ जिन्हां दे वास्ते मैं एडे पाप कीते, जिन्हां दे खातर मैं लोकां नूं धोखे दे दे के धन कट्ठा कीता, ओ परिवार दा कोई भी संबंधी मेरे नाल ना निभिया। इस वास्ते पातशाह जी हुण कृपा करो, बहुते फिर बहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करके बख्श लो। साहब जी भी क्यों देखन ना पानी विच, बहुते फेर बहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करो पातशाह जीओ हुण मुक्ति देओ। तां साहब जी ने जल दे छटे दे के आप निरंकार दा रूप संतान गुरु नानक पातशाह पशु परेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारे, किस किस नूं नहीं तारे। आ कीड़े उपर भी जल दे छटे मार के आख्या जप श्री वाहेगुरु, तुसी भी जपो सारे श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु दे छटे मार के जदों उस कीड़े नूं साहब जी दी नजर पई तां ओ कीड़े दी जून छड के बिरद बाबा दिव मूर्त धार के गुरु नानक पातशाह दे अगे आ खड़ोता। सारे ही परिवार दे संबंधी लोग पिंड दे वासी इकट्ठे हो के आ चोज वेख रहे हैं। आवाज आई बिरद बाबे दी उस रूप विचों परिवार दिया नूं आख्या आ जो महापुरख आए हन ए रब दे रूप हन, गुरु नानक पातशाह निरंकार दा रूप है, इन्हां दे चरणों विच पाओ तां तुहाडी कल्याणता, इन्हां दा वचन मनोगे तुहानूं सारे सुख प्राप्त होंगे। इस वास्ते साहब धन गुरु नानक पातशाह कहंदे हन नानक आखे रे मन सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। इन्हां स्वासां दे नाल दिहाड़ी तेनूं 24,000 स्वास मिलदे, उन्हां स्वासां नूं जप जप के सफल कर। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप क्या करदे सन, दिहाड़ी इक पाठ सुखमनी साहब दा कर लै तेरे दिन दे लिते होए 24,000 स्वास सफल हो जाणगे। सात संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु।
0: फिर आप बड़े प्यार नाल क्या करदे सन।

जे कोई शी माला पहली पौड़ी दिया रोज कर लवे ना, मेरा ते गुरु नानक ओदा जामन होया, मैं नरकां विच नहीं जान देंगा। प्यारी सात संगत जीओ, आ मनुष्या जीवन जो मिलिया ना, आ जिस तरह इथे अपना घर बढ़ाया है, अगा भी घर दी सोचो, जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना। उथे ता साहब जी कहिंदे ने कूड़ निखुटे नानका ओड़क सच रही। उथे जेड़े कूड़ियार हन उना नू था नहीं मिलनी, उथे ता सच्यारा नू था मिलेगी। पावे कोई भी होवे, किसे जाति दा होवे, किसे मजहब दा होवे, किसे धर्म दा होवे, जे उसनू परमात्मा नू याद कीता है, गुरु नानक पातशाह दी आराधना कीती है, नाम जपया, ता कबीर जी निर्णय करदे हन गुरबाणी विच के कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, ओ कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। इस वास्ते गुरु नानक पातशाह कहंदे हन हुण वेला ही मेरी एक सिख्या लै लै, दुनियावी सिख्या ता लैंदा है ना, एक मेरी सिख्या भी लै लै, नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही।

शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उना दा सहम मैनू हुन सता नहीं रहा, वो भज गए ने मेरे कोलों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उना दे चरणा ते सियाणपा छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहने ने जवां दी मार तो तेनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आख्या

0: चंदले की देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों लगे?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दाद दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई पराणा जी बैठे, दर्शन करन चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सीखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे कोलो नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। पातशाह मैनू तुसी आ गया दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे, कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा, जिन्हें रचिया आपे कर ले, तैनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गईयां तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणां विचों। ते साहब हस के कहिंदे ने भाई पराणा, जे मेरे चरणां चों तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवा मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए, ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तों, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी, सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालिक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती, सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी, वाहिगुरू वाहिगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

पता नहीं से कि इस तरह परमेश्वर का सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी का काम होवे ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखता, तारीख देखता, महीना देखता, साल देखता, मुहूर्त देखता। ये काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरन लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा, पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखण देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखण देता, ना तरीक देखण देती, ना कोई महीना देखण देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नूं मिलके घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया। परिवार नूं मिलके बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाणा। घर वाले कारु डीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नूं, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म का हुक्म आ गया

बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया ता छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नु मिली लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नु मिलन दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

राज मिल जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज पाग जोबन जवानी ग्रह कहें कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहंदे ने पति नूं, जिन्हां दे पति मर गए, जिन्हां वापस नहीं आना। उन औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने, तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतण, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने, ओ पत्नी किवें जीवन बतावे जिहदा पति इक वारी गया ते मुड़ के वापस नहीं।

पर मैं क्यों सोवा हाली ते आस सी तेरे नाल बड़ा जीवन बताना है पर तू तो विच ही साथ छड़ गया तू नहीं ता साहब जी कहते ने दुनिया एक बियाबान जंगल लगता है ते ओ मां जिदा पुत ना रवे ओदा जीवन कैसा कहते ने एक वरी हिंदुस्तान दा बादशाह जिदा नाम अकबर अकबर दी जदू मां मरी अकबर बड़ा रोया दरबारी कहन लगे बादशाह तू क्यों रोना है तू हिंदुस्तान दा बादशाह जहां पना आली जा दिले इलाही शहनशाह अनेक नामा नाल दुनिया तुहानू याद कर दी सलाम कर दी तुसी क्यों रोंदे अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही कहन लगा बादशाह कहन वाले शहनशाह कहन वाले ता बहुत ने पर इको ही सी मेरी मां जेड़ी क्या कर दी सी वे अकबरा हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी क्यों जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी जो मां दी चिड़क विच भी आनंद है ओ दुनिया दी सलामा विच नहीं।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग भौरन गुरता।